को फाइंड इट, डोंट एंग्री मी, माइंड इट। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है, वो घर पे आता है मुझसे सीख जाता है।